0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par.
5: ईरान पारा कहीं भी जारी है जो भरपूर जवाब देना जो ऐलान ईरान के नायब परदेह वजीर काजम गरीब आबादी जो आए थे ईरान से हमला किया गया तो उन्हें जो जिम्मेदार अमेरिका हों नतीजा भी अमेरिका संदन सहूलत कारण के भोगना पवंदा ईरान के गालन ए मुआदे लाए धमकिन से झुकाए न तो सजे 17,500 अरब रुपयन का वधीक जी वफाकी बजट अज पेश कई वी बजट की मंजूरी लाए वफाकी काबिना जो इजलास पे अज तलब पगारों ने पेंशन में वाद ए टैक्स रेवेन्यू जो अदम 15,270 अरब रुपया मुकर रखने जो इम्कान सोलर पैनल्स स्टेशनरी ए स्टॉक मार्केट लागू टैक्सेस में बिकाए किस्म की तब्दीली न करने जो फैसलो इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सेल्स टैक्स की शरह में 25% तई वाद इम्कान हाइब्रिड गाड़ियों से टैक्स की पुरानी शरह बरकरार रही रवायती बारण से हलंदड़ गाड़ियों से कार्बन लेवी लगाने की तजवीज मकामी सतह से तैयार थल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ती थने की उम्मीद नई बजट में पेट्रोलियम लेवी में 1,727 अरब रुपया वसूल करने जो प्लान कर्जन जो व्याज भरण लाए 17,884 अरब इंतफाई शोबे लाए लगभग 3,000 अरब रुपया रखने जो इम्कान एक्सपोर्ट जो हदफ 32.8 अरब डॉलर से इम्पोर्ट जो खातो 70 अरब डॉलर लगा वो खिदमत के शोबे में 11 लख सनअती शोबे में 5 लख जरे शोबे में 4 लख नौकरियों जो हदफ मुकरर वफाकी बजट में 220 अरब रुपये जहां नवा टैक्स लगाने की तजवीज पेट्रोलियम शे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने जो भी इम्कान स्टील सेक्टर लाए फिक्स्ड सेल्स टैक्स निजाम आने जो फैसलो बारन जे फार्मूला खीर केचप गिह खाजर तेल चाय पत्ती कंड्रो खुश्क खीर की सेल्स टैक्स की वसूली लाए कीमतू प्रिंट करण लाजमी करार वफाकी हुकूमत मुल्क में गुर्बत ए बेरोजगारी में वाद जो एतराफ करे वरतो गडो गडो आवाम जे सयालन आमदनी में वाद जी विधावा तरक्की जी शरह अदब का घट थे एतराफ वफाकी हुकूमत इक्तसादी सर्वे जारी करे छो नाणे वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब चो आए तो चैलेंजेस बावजूद मईशत सुठी कारकर्दगी डेखारी है पाकिस्तानी मईशत जो खातो 452 अरब 10 करोड़ डॉलर थी वो है पाकिस्तान वट नाणे जा जखीरा भी 17 अरब 10 करोड़ डॉलर आन मुआशी तरक्की की शरह में भी 3.7% रही हिते की सूरताल ठीक हो जाए तो 4% तीन तरक्की वाली शरह हासिल कर वो हाँ मालियाती खसारो 0.7% है प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है जरे शोब 2.99% तरक्की कई पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक्की कई तरक्की आफिसर जवान की जनाज नमाज अदा कई वे शहीद आफिसर जवान की जनाज नमाज में वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सदा आसम ने नायब वजीर आजम एसागार शहीद के वारसन सिविल अक्सरी आफिसर बेन शिरकत कई आईएसपीआर मूजिब हादसे में शहीद थियल बिन मसीही फौजन जो आखिरी रस्मों रावलपिंडी के चर्च में अदा की वजीर आजम शहबाज शरीफ चो है शहीद के फर्ज शनासी पेशावारानी महारत मशल रहा पाक फौज जो अमुन सलामती

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by.
1: Minus ho sari tensions. Jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: Shaadi ka event aur stage aada taiyar. Kyun? Kyunki vendors ko chahiye fauri payment. Event planning ho ya koi aur business, payment ruk jaye to kaam bhi ruk jata hai. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

कान हाइब्रिड गाॾियुनि ते टैक्स जी पुराणी शरह बरक़रार रहंदी। रिवायती ॿारनि ते हलंदड़ गाॾियुनि ते कार्बन लेवी लॻाइण जी तजवीज़। मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्तियूं थियण जी उमीद।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान खिलाफ जंग में कामयाबी मारण की दावा करे छी। तहरान से जल्द वायदे ते सयूं थियण की दावा। डोनाल्ड ट्रंप चवा है ईरान के जंग में शिकस्त दई छी, हाँ वायदे ते सयूं थियणियूं आहिन। ईरानी सुप्रीम लीडर वायदे ते राजी थी वियो आहे। सयूं यूरोप में थींदियूं। वायदे ते सही वाली तकरीब में नायब सदर जेडी वेंस शरीक थींदो। वायदो थींदे ही आबला हरमुज़ भी मुकम्मल तौर खुली वेंदो।

अमेरिका सां अञा ताईं कंहिं बि माहिदे खे हतमिशी की नाहे ॾिनी। पाकिस्तान ऐं कतर सासीअ में फाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। ईरान अमेरिकी सदर जे माहिदे ते पहुचण वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। ईरानी परदेही वज़ारत चयो आहे त माहिदे जो वॾो हिसो तयारु आहे, पर अमेरिका बार बार पंहिंजी पोज़ीशन तब्दील करे रहियो आहे। अमेरिकी क़दम सफ़ारती अमल खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। तेहरान रेड लाइन्स ते छा न कंदो।

चमन अली मीरा जी खूबसूरत आवाज ऐं तव्हांजो सुंदर समाथो त शहर चवे थो सूंह ऐं सिंगार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं सूंह ऐं सिंगार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं मूं बि मुंहिंजे यार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं हर घड़ी हू हुस्न ते अनाज थो निर्मल करे हर घड़ी हू हुस्न ते अनाज थो निर्मल करे दीद जे दीवार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं बेमिसल ऐं बेबहा थियो साथ उन जो उम्र भर बेमिसल ऐं बेबहा थियो साथ उन जो उम्र भर प्यार वारे प्यार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं सूंह ऐं सिंगार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं मूं बि मुंहिंजे यार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं।

वक़्त जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो हलंदासीं नंढड़ी ब्रेक जी तरफ़ ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं वापसि अची करे शामिल कंदासीं तव्हांजी लाइव कॉल्स ऐं तव्हांजा प्यारा प्यारा मैसेजेस।

0: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है GAFM 88 की सरमा।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: ढाडो सुठो
1: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे
1: लगल धक जोड़न ए मास में गंद भरजी वणनो जंग ए बाजा
2: चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
3: ये yeah!

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

तव्हां सां गॾु हूंदासीं ऐं वेंदे वेंदे हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग मुंहिंजी प्लेलिस्ट में मौजूदु आहे, उन खे प्ले करे वञा थो ऐं उमेद कयां थो त तव्हांखे वध खां वध पसंदि ईंदो। अब्दुल सोलंकी जो आवाज़ आहे ऐं इरशाद जागीरानी जी शायरी। इजाज़त अलह वाही अलह निगहबान।

0: It's 1 p.m. is brought to you by
1: Bank Al Habib का भरोसे का।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
3: 67 अरब रुपया मुकर्रर करने का इम्कान, सोलर पैनल स्टेशनरी स्टॉक मार्केट से लागू टैक्सेस में तब्दीली न करने जो फैसलो, इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों ते सेल्स टैक्स की शरह में 25% ताई वाध जो इम्कान, हाइब्रिड गाड़ियों ते टैक्स की पुरानी शरह बरकरार रहंदी, रिवायती 12 ते हलंदड़ गाड़ियों ते कार्बन लेवी लगाने की तजवीज, मकामी सतह से तैयार थींदड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्तियों थियण की उम्मीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान खिलाफ जंग में कामयाबी मानण की दावा कर छी, तेहरान से जल्द वायदे से सही थियण की भी दावा। डोनाल्ड ट्रंप चवाए तो ईरान के जंग में शिकस्त दई छी, हाँ वायदे से सही थियणी आन। ईरानी सुप्रीम लीडर वायदे से राजी थी वो है, सयू यूरोप में थन्दू। वायदे से सही वाली तकरीब में नायब सदर JD वेंस शरीक थन्दो। वायदो थन्दे ही आबना हरमुज भी मुकम्मल तौर खुली वो। अमेरिका से अजा तई कें भी वायदे के हतमी शिकिल ना डिनी, पाकिस्तान कतर सासी में फाल किरदार अदा कर रहा है। ईरान अमेरिकी सदर के वायदे से पहुंचने वाली खबरों के रद्द कर छोड़ो। ईरानी परदेही वजारत चवाए तो वायदे जो वो हिस्सों तैयार है, पर अमेरिका बार बार पंजी पोजीशन तब्दील कर रो है। अमेरिकी कदम सफारती अमल के मुतासर कर रहा है, तेहरान रेड लाइन्स से ठा न कंदो।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप
5: बारे जो हदफ 15% रखण जी बि तजवीज़, तरक़ियाती बजट 1000 अरब रखण जी तजवीज़, बजट में सालियानी तरक़ीअ जी शरह 4% रखण जी तजवीज़, सनअती तरक़ीअ जो हदफ 4% रखण जी तजवीज़ शामिल, मजमूई सिरकारे जो हदफ 15% रखण जी बि तजवीज़, तरक़ियाती बजट 1000 अरब तरक़ियाती मनसूबनि जे लाइ 88 अरब 23 करोड़ रूपया रखण जी तजवीज़ शामिल, हाउसिंग वारी वधाइण जे लाइ 16 अरब 49 करोड़ रखण जी तजवीज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी मारण जी दावा करे छॾी, तेहरान सां जल्द माहिदे ते सहियूं थियण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान खे जंग में शिकस्त ॾेई छॾी, हाणे माहिदे ते सहियूं थियणियूं आहिनि। ईरानी सुप्रीम लीडर माहिदे ते राज़ी थी वियो आहे, सहियूं यूरोप में थींदियूं। माहिदे ते सही वारी तकरीब में नायब सदर जे डी वेंस शरीक थींदो। माहिदो थींदे यादि हरमुज़ बि मुकमल तौर खुली वेंदो। अमेरिका सां अञा ताईं कंहिं बि वाइदे खे हदमी शिकिल नाहे ॾिनी। पाकिस्तान ऐं कतर सारसी में फ़ाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। ईरान अमेरिकी सदर जे वाइदे ते पहुचण वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। ईरानी परदेही वज़ारत चयो आहे त वाइदे जो वॾो हिसो तयार आहे, पर अमेरिका बार बार पंहिंजी पोज़ीशन तब्दील करे रहियो आहे। अमेरिकी कदम सफ़ारती अमल खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। तेहरान रेड लाइन्स ते छा न कंदो? वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां पेशावर जो दौरो। मोहसिन नक़वी CMH पेशावर में दहशतगर्दनि जे हमले में ज़ख़्मी थियल पाक फ़ौज जे ऐं FC जे जवाननि जी अयादत कई। मोहसिन नक़वी पारां ज़ख़्मी अहलकारनि जे हौसले जी साराह, क़ौम जा हीरो क़रार।

नवाब शाह भरसा सौचन में जमीनी तकरार तां छेड़ो फायरिंग में ब भायर बाची वया टे भायर जख्मी सकरन रोड ते लांडी स्टॉप वटि फायरिंग में 28 सालनि जो सरमद ऐं 18 वरनि जो असलान जमाली क़त्ल थी विया गोलियूं लॻण सबबि टे भायर फैसल सऊद ऐं सलमान जमाली

सखर जे गरम गोदी वारे इलाके में गरम गोदी वारे इलाके में ब बारा कालरा विखे हयाती विञाए वेठा पंजन साल की निंगरी ए बिन साल बारड़ो कालरा विखे गुजरल ही गुम थियल बारड़ो अब्दुल रहमान कुरेशी जुअर के फसल में बेहोशी वाली हालत में थे निंगर की गलती जो की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया वो वासन पारा निंगर से तशद्दुद करे फसल में फिटो कंदड़ जवाबदार के गिरफ्तार करने जो मुतालबो दरबार में कादीवा के आबादगारन जो पानी की खोट खिलाफ वलू महर में एहतजाज आपाशी अमले ते रिश्वत एवज मुंडवार आबादगारन के पानी विक्रो करने जो इल्जाम आबादगारन है आपाशी अमलो रिश्वत वी असो पानी विक्रो कर रो है पानी पुछड़ी तक पहुंचाया वहीं छाछरो के गोठ कागिया में पीने के पानी जो सख्त बहरान रहवासन जो खाली थाम खड़ी एहतजाज गोठान मूजिब 5000 का आबादी पीने के पानी के लिए

0: This time check is brought to you by
1: Sun Cross.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 नेटवर्क। सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सनती तरक्की जो हदफ में 4 सैकड़ो रखने की तजवीज शामिल, मजमू सीड़पकारी जो हदफ 15 सैकड़ो रखने की तजवीज, तरक्याती बजट 1000 अरब रखने की तजवीज शामिल, बजट दस्तावेजन मुजिब वफाकी वजारतों जो तरक्याती बजट 682 अरब 48 करोड़ रूपया रखने की तजवीज शामिल, सेहत वाली वजारत जो तरक्याती बजट 16 अरब 6 करोड़ रखने की तजवीज, वफाक तहत सूबाई तरक्याती मनसूबन के लिए 88 अरब 23 करोड़ रूपया रखने की तजवीज शामिल, हाउसिंग वाली वजारत के लिए 16 अरब 39 करोड़ रूपया रखने की तजवीज, मनसूबन के लिए 36 अरब रखने की तजवीज शामिल, फाइनेंस डिवीजन जो तरक्याती बजट 1 अरब 44

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान बुधंदा रहो। काम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर था भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे रखी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या है सिंधजी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सदन समूरा कुछ मेंबर सदिक थींदा कौमी वफादन तहत बजट जो हिस्सो थींदासी। नए माली साल जी बजट में सिंध के अहम मनसूबन लाए घट रकम रखने जो इंकशाफ। बजट दस्तावेजन मूजिब सिंध के अहम मनसूबे सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे लाए रुगो 30 अरब रखने की तजवीज। सिंध कोस्टल हाईवे मनसूबे लाए भी 25 मेहरान हाईवे लाए भी रुगो 21 अरब रखने की तजवीज। कराची बल्क वाटर सप्लाई मनसूबे लाए भी 10 अरब रखने की तजवीज। रेलवे के ML1 मनसूबे लाए 25 अरब रूपया रखने की तजवीज। मेहमद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाए 26 अरब रखने की तजवीज। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाए 21 अरब रखने की तजवीज। दानिश स्कूल लाए 22 अरब रखने की तजवीज शामिल। नए माली साल जी बजट में सालियाने तरक्की जी शराह 4% रखने जी तजवीज। सनअती तरक्की जो हदफ भी 4% रखने जी तजवीज। मजमूई सीड़पकारी जो हदफ 15% रखने जी तजवीज। तरक्याती बजट 1000 अरब रखने जी तजवीज। बजट दस्तावेजन मूजिब वफाकी वजारतन जो तरक्याती बजट 682 अरब 48 करोड़ रखने जी तजवीज। सेहत वारी वजारत जो तरक्याती बजट 16 अरब 6 करोड़ रखने जी तजवीज। वफाक तहत सूबाई तरक्याती मनसूबन लाए 88 अरब 23 करोड़ रखने की तजवीज। हाउसिंग वारी वजारत लाए 16 अरब 39 करोड़ रखने की तजवीज। वफाकी तालीमी मनसूबन लाए 36 अरब रखने की तजवीज। फाइनांस डिवीजन जो तरक्याती बजट 1 अरब 44 करोड़ रखने की तजवीज। दिफाई पैदावार लाए 97 करोड़ 98 लख रूपया रखने की तजवीज। सूबन के तरक्याती मनसूबन लाए 2218 अरब रूपया रखने की तजवीज। पंजाब लाए 749 अरब ए सिंध के मनसूबन लाए 706 अरब रखने की तजवीज। केपी जो तरक्याती बजट 455 अरब ए बलोचिस्तान जो 308

बजट का कह रही हूं, एमक्यूएम पारा मकानी निजाम बाबत आईनी तरमीम जल्द आण जो मुतालबो एम भी गलायो ते एमक्यूएम के एतमाद में वरतो।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैन साथ ज़िंदगी भर का।
1: ईद ते सिर्फ़ चांहि नाहे ठहंदी, महफ़िलूं सजंदियूं हिन। टपाल मेज़बान, ईद उल अज़हा जो असली मेज़बान।
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
3: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत, और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती मजबूती का न्यू लुक।
4: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजा ब्यूटी क्रीम।
2: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर था भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जी

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो लई।

करती है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंधी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: उनके कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
4: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिया?
5: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती ज़हन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91 आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे।

0: कैसा महसूस हो रहा है?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: मुझसे बात कर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खां भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: थिया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर खां भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: ही आहे सिंधजी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी दाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: कहती हैं अपनी, मैं मनोज हूँ कि जिंदगी अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल सेक्स जो आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिसके व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल।
1: सिंध की हो FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा मियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क।
1: ईरान परदेही वजीर अब्बास राखची बे अमरीका सा अमन मुआदे के वेझो होने की तस्दीक है तो शुरुआती मतन से इतफाक थो है पर हतमी मंजूरी अजा रहल है। मुआदे बाबत अगकथियों न कई वन मुनासिब वक्त से तफसील का आगाह किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बे इराकची की ट्वीट के रिट्वीट कर छो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस है ईरान के मुआदे से सही एवज रकम या मंजमन थियल फंड का